बिखै समाहे दोहरा। जब आए सुप्रभ को भयो जन्म तरह जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कैद सुनाए कब बाच दोहरा। ठाड़ भयो मैं जोर कर बदन कहा सरन आए, पंथ चले तब जगत में जाब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मो कोटक बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते राव सास करोर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत, सुरग बा सरग बर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई। जो यह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निकट न आवै, बिसन भगत की ए फल होई आज ब्याद छुवै सकै न कोई। सम्मत 1755 हाड़ वदी प्रथम सुख दावण, तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहु लेहु सुधारा दोहरा। नेत्र तुंग के चरण तार सद्रव तीर्थ रंग, श्री भगवत पूरन कियो रागबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद, ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने, ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार, बाहीं गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वधिया वधाईया राग रतन परवार परिया शब्द गावणी आईया शब्द तां गाव हो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ऊहू करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया

ताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब से अधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वास्त तजी नह जाई नेत नेत रख उर तारो तम संसार चन लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातू नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पाई होई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थी वै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थी वै हरिया पावड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे भावजल बिखम सगाहो गुर सबदी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कलमह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोय न जाए जे आवै तो दयाहे सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जाप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरते आदरगह पाई ठाओ कहु नानक कृपा करे जिसनु एह वात दे जाग मह उत्तम काढ़ी अहे विरले के ई के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होआ आप दयाल मन होना विसारियन साध जना कै संग भवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खेन माहे बेदारियन तिस साहिब की टेका नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टे नानक मनै माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

सदा तुदया गया रुदास हमारी जियो पिंड कहु नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फरियंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरी आय करना उन दया वै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पंथ दे वाली लोक प्रलोक के सहायक अमृत के दाते सच्चे पिता जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां जी दे जोत ताखत चावर छतर दे मालक सर्ब कला भरपूर जुगो जोगे अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन पाठ उपदेह जी का त्यांतर के खालसा जी बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देग सुन किरण डिठ की तातना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीख दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा संघ निबाहित ना पुरातन वर्तमान समय दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ते हंतर के खालसा दी बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ते हंतर के खालसा दी पंजां खालसा दी साहिब तहां तहां रशिया रे आए देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी बख्शो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान श्रदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जय जयकार बोलो जी आप जी दे सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत परदे राखे आप वाहिगुरु जी हे अकाल पुरखे अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ श्री ननकाणा साहब अते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण निताणियां दे तान नेउटियां दी ओर सच्चे पिता गरीब निवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अकाल पुरख अंतरजामी सतगुरु जी आप जी के हजूर पावन चरणा कमला पाल समृत रूप शब्द कीर्तन सोदर दी चौंकी रिया राज साहब जी के पाठ जी दी अरदास बेनती अखरवाद घाट भुल चुक दी खिमा बख्शो अगे वास्ते सुमत सोझी बख्शो जी पढ़ी सुनी बाणी दर ते प्रवान करनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव संगत दे हिरदयां विच वसाउणा संगतां दीआं हाजरियां भेटावां सेवावां अपने दर ते प्रवान करनिया चलिया कदम कदम लेखे विच लाउणा दरों करो समुचिया संगतां परिवारां बच्चियां नूं गुरसिखी दी दात नाम सेवा सिमरन चरणा कमलां दा प्रेम भरोसा बाणी बाणी नाल प्यार कर परिवारां विच सुख शांति चढ़दी कला जीवन दे रोगता तंदरुस्ती दसा नूहां दी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां अंग संग सहायक होना चढ़दी कला दी दात बख्शिश करनी जी कृपा करो अपने खालसे पंथी नूं सदा ही चढ़दियां कला परस्पर प्रेम प्यार एकता तफाक राज भाग खालिस्तान दी दात बख्शिश करके पंथ कौम नूं निहाल निहाल करो जी जेलां दे विच बंद बंदी सिंघां नूं दे रोगतावां चढ़दियां कला रहाइयां बख्शिश करनियां जी दर घर दे प्रीतमान मार्शल प्रताप सिंह वल्लों महाराज घर परिवार दी सुख शांति दी अरदास बेनती है जी गुरदेव सिंह संधु वल्लों जन्मदिन ते अरदास बेनती चढ़दी कला दी अरदास है जी समिंदर कौर वल्लों परिवार दी तंदुरुस्ती चढ़दी कला दी अरदास बेनती है बीबी जसबीर कौर वल्लों महाराज आप दी कृपा दे नाल श्री सहज पाठ आरंभ कीते सन मध भाग दी अरदास बेनती है तंदुरुस्ती चढ़दी कला दी अरदास बेनती है बीबी तेंद्र कौर दी चढ़दी कला तंदुरुस्ती दी अरदास बेनती आप जी के हजूर संगतां वल्लों कड़ाह प्रसाद दी पावन देग सजा के हाजिर है देग सजाउंदियां बाणी पढ़दियां भुल्लां दी माफी बख्शिश करो करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लाभ भोग हर राय
ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਛਤਰ ਝੁਲੇਗਾ ਸੀਸ ਪਰ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ

अमृत बाणी हर हर देरी। सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे।

नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। गही ओट साधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप खालसा साध संगत जी आप जी बड़भागे हो जो गुरु चरणा विच हाजरियां पर के महाराज दर्शन दीदार अमृत रूप गुरबाणी रहरा साहिब दे पाठ सुन के महान लाहा प्राप्त किया है। हुण संध्या समय दीवान दी अरंभता आरती आरता शब्द कीर्तन की हाजरी पर रहे हैं भाई साहब भाई गुरु सेवक सिंह की हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब वाले सतसंग जी हफ्तावारी दीवान समर्पित अज गुरु घर विखे हाल नंबर 3 श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होए हैं। ऐतवार भोग उपरंत जो मौजूदा संघर्ष के शहीद सिंह हैं इस हफ्ते के इतिहासक दिहाड़िया समर्पित दीवान सजनगे। साल संघ जी कल जो 15 अगस्त हिंदुस्तान विच आजादी दिवस के तौर पर मनाया जाता है पर सिखां दे लई साल संघ जी उजाड़ा दिवस ब्लैक डे दे वजो मनाउंदिया होया जो भारत की एबेंसी वैनकूवर विखे संगतां वल्लों शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि आपां रोज़ दोने समय अरदास करदे हां। हर गुरसिख अरदास करता है कि श्री ननकाणा साहब अते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है ते किस दिन विछड़े सन 15 अगस्त 1947 दे विच। सो साध संगत जी सिखां दा कोई लैणा देणा नहीं है इस दिन ते लखां दे हिसाब दे नाल सिखां ने उजड़ के साध संगत जी एक थान तों दूजी थान ते जाणा सारा अपना प्रॉपर्टी धन दौलत नूं छड करके। सो इस वास्ते कल जो 12 बजे तों लैके 2 बजे तक साध संगत जी उह शांतिपूर्वक रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरु घर तों बस भी चलेगी वध तों वध शमूलीयत करन दी कृपालता करनी जी। आओ हुण कीर्तन दे नाल जुड़िए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

कोट ब्रह्मांड उदारह रहाउ। करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख सामारह। हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए भूपत बपुरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुखदाते सब नानक जगत तुम्हार है।

इहो लिखियो लेख मथामा रहाउ। खोजत खोजत भयो बैरागी, फिर आयो देह ग्रामा। गुर कृपाल सौदा इहो जोरियो, हाथ चरियो लाल अगामा। आन बापार बणज जो करिय,

0: कर्ण करावन.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी.
3: मोहल्ला पंजवा मोहनी मोहत रहे ना होरी, साधक सिद्ध सगल की प्यारी, तुटे ना काहू तोरी रहाओ. खाट शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ गवन ना थोरी. पूजा चक्र वर्त नेम तपिया, पूहा गैल ना छोरी. अंधकूप मह पत

सिमर ठाकुर जिन सब किछ दीना, आन कहा पह जावो। सफल सेवा स्वामी मेरे की, मन बांछत फल पावहो। कहो नानक लाभ लाहा लै चलहो, सुख सेती घर जावहो। सारग महला पंजवा, ठाकुर तुम सरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया रहाओ। अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। बाह पकर कढ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुरबंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सारग महला पंजवा, हर के नाम की गात ठांडी। वेद पुराण सिमृत साधु जान, खोजत खोजत काढ़ी रहाओ। शिव बिरंच अर इंद्र लोक, ता मह जल तौ फिरया। सिमर सिमर स्वामी भय शीतल, दुख दर्द भ्रम हिरया। जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा। नानक की

0: करत पछतावह कबहु ना साकह छांट। निंदक जमदूती आए संघारियो देवह मूड उपर मटाक।
1: निंदक जमदूती, निंदक ते भी थोड़ा जा रुकना ते जमदूती ते भी ठहरा लाउणा निंदक नूं नखेड़ के। निंदक जमदूती आए संघारियो, निंदक जिहड़ा सी ना उहनूं जमदूतां ने आण के संघार दित्ता। जिहड़ा गुरु परमेश्वर दा निंदक है उहदा जमदूत आण के साध संगत जी उस नूं फड़दे हन। निंदक जमदूती आए संघारियो देवह मूड उपर मटाक। हाँ जी
0: नानक।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पाट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती हुई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीते। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावां, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडिया नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इस शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख-वख जीवां विच परमात्मा ने वख-वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी दिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਿਕ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਕੋਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਏ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਮਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਕੋਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜੀ ਜਾਏ। ਗਰਦਨ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਕੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ, ਉਸੇ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, निहो कवल जल जानिए खिड़ मूह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे, मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओ भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे, चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए बिलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ए कैसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी ए पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभन वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगता सानूं दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नूं फिर समझिए मन रे क्यों छूटे बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नूं कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नूं समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो उह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। उह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख

बिन प्यार मृतक कहियां नानका जै प्रीत नहीं भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है। उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है? कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन की गल की। हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा की एक बड़ी वड्डी दात है। ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होने के बावजूद उस दे अंदर प्यारे की प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख का तन शमशान भूमि है। प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए, उदा करना की है? बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। कहने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तो उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए, सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनी गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा। ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करे, परमात्मा दी बंदगी करे। जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की? कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना, बंदगी करके ही जिंदगी है। जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर मैं जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने बिच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष की कली जवानी ही नहीं, जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है। अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन। ते हकीकत एवे असी कहां कि मिट्टी मिठी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिठी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है। ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलियां पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए। ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना

0: शक्ति पूर्ण तौर ते आप इको दम जमीन ते डिग पे। कह लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उथे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच उदे जिक्र विच उदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्हां ने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्दा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां। उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल, पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई। कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं, अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरना विच ओना ने फिदा कर दिता, ओना ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होने वालियां कुछ उदाहरणा नू अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया सचे पातशाह ए ता आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर ए दसो प्रीत कैसी करिए, प्यार किहो जिहा करिए। कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहिंदे कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझण लई है, अपनी जिंदगी दे टुकान वास्ते ना, के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नूं प्रगट करन लई। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, को के उदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा हुईयां, लहरां पैदा हुईयां, ते जदो पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज हुई ते कमल दी नार, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वजी, कमल दी नाली नूं वजन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जिहड़ा जड़ तो लैके फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी उन्हूं लहर धक्का मार के खब्बे, कदी सजे, उन्हूं सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सजे नूं धक्कदी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नूं प्रीत किवें करीदी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जिहड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं देंदा हुंदा। ते सच जाणियो जिहड़ा बंदा मित्रता करदिआं होइआं भी उलामे गिले शिकवे करदा है, ओह कदी प्रेमी नहीं हो सकदा, ओह कदी प्यारा नहीं हो सकदा। कहन लगे इस कमल दे फुल नूं पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नूं ते बाणी विच इह गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है, तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है। तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना है, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके कोई प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरां खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नू, तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरां मार दे, छड परा इहो जिहा पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उतर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड़ दिता उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना। पानी नू छड़न दी देर कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना है, मेरी खोंद नू खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार, ना एदे तो नरलेप दा, ना सुगंधी, ना रूप ते ना पवरे, तां की होया जे पानी ठोकरा मारदा। आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने ए गुण भी तां मैनू पानी ने कृपा करके बख्शे ने ना, जिन्हें गुण दिते ने एदी ठोकर भी सहारांगे। हजूर ने कहा ए मनुख प्रेमा भगती दा अर्थ है कमल दी थरा तू प्यार कर, किवें परमात्मा ने तेनू सुंदर दे दिती है, परमात्मा ने तेनू गुणा दी सुगंधी दिती है, परमात्मा ने तेनू सुरत दिती है संसार विचों नरलेप रहन दी जुगत दिती है, परमात्मा ने तेनू ताकत दिती है करोड़ा जन्मां दी दूरी होण दे बावजूद तू सुरत करके ओदे चरणा नू पकड़ के खेड़ा प्राप्त कर सकना है। जिस परमात्मा देव ने कमल दी तरह तेरे ते इन्नी कृपा कीती होवे ते जे फिर भी थोड़ा जा झटका लगे दुनियावी ते यक लखत परमात्मा वालों मुंह मोड़ के पिट करके चला जाए, सच जानी ए कदी सच्चे प्रेमी नहीं हुंदे। प्रेमी ता होवे जेड़ा ठोकर खा के भी अपने प्यारे दा लड़ कदी ना छड्डे, एवे प्रेमा भगती। बाबे नानक ने ऐसी प्रेमा भगती कीती ते बाणी विच बचन कर गए, कहन लगे रे मन ऐसी खारशों प्रीत कर। रे मन दा अर्थ अपने मन नू संबोधन कीता, अपने मन नू मुखातब कीता। कहन लगे रे मन ऐसी खारशों प्रीत कर जैसी जल कमले, जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है लहरी नाल पछाड़िया, जे लहरां ओनू उठ के पछाड़दियां ने धक्के मार दियां ने ती विगसै असने, ओ लहरां दियां ठोकरां विच भी खसी जांदा है, ओ ठोकरां विचों भी प्रेम दियां पिंगां झुटी जा रहे हैं। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत कीती जिवें कमल दा फुल ठोकरां सहार के भी प्रीत पिया करदा सी। जे किसे ने वट्टा चुकिया, जे किसे ने दीवाना किया।
1: KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
2: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया, किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल। अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पत पाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे व्रता कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभु आपे आप
1: आपन किया कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचै कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: रब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को गर्भ है
0: जा सब कुछ तिसका दिया दर्प है
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहतावे
1: जे को होए वह दातार
0: इस देन हार जाने का बार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तर
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: जिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिर लाई है
0: गुर बिलखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग तू तिसे चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आदि मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संतान संग जाल
0: अवर त्याग बिखिया जिंदा
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुखु जलहर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतगुर हार
1: चरण साध के धोई धोई पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंक बेगम ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: मुखे कौ देव ते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिस का उ करना जोग
0: तिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जन सदा सदा दिन रैणी
0: भक्ति ऊंच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाकै मन को की प्रतीत
0: जिन आवे हर प्रभु चीत
1: भक्त भक्त सुनिया तिह लोए
0: जाकै हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेक नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
0: सब बुझाए नानका जिस हो सो प्रसन्न अष्टपदी
1: अवनासी ब्रह्म मन मह राख
0: मानु की तू प्रीत त्याग
1: इससे परे नाही किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊं
0: नानक कै मन ए नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: खंड रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याई त्याई भक्ता सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाही
0: सगल देव हार अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोई अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जा को परमाए
0: जन्म रेफर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना बिद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे किन माहे
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना बिद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के धारे सगले जंत
0: नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के धारे आकाश पाताल
0: नाम के धारे सगले आकार
1: नाम के धारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत के वर प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरख सब माहे समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत्त
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नाम गुरते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जल जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की आ सब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सृष्टि सो करना हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: रब के रंग राज जन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ लहे
1: कोई दाते दुख काट न हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजनहार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: कर्ण करावन तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजा ते समाहे समान
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढाके
0: अपने सेवक की सर पर रखे
1: अपने दास को दे बढ़ाई
0: अपने सेवक को नाम
1: अपने सेवक की आप पत रखे
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेवक को कोऊ न पहुंचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रखे
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मांस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारे न रखे अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: मते मन तन तरपी है
1: नाम जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर ना हिंद दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोबत नाम
0: रहो नानक जन कैसद काम
1: बोलो जस जीवा दिन रात
0: रब अपने जन की नींदा
1: करे भक्ति आत्म कह चाय
0: रब अपने से रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जान
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण क्या एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पाव है
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाट
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर
0: गुर बचनी हर नाम उचर
1: सतगुर सिख के बंधन काट
0: गुर का सिख बकार के हट
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बट भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष्ट न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्याव
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो इन्हे कामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्व गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ
0: अनक बार गुर को बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश परम
1: सह सियान पलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: अर्षत चरणगत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करन आगामी
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कह हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लय मिलाए
1: देवाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काऊ बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणता
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहु दुख ते नासे
1: सत माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निरपो होए बसे
0: सगल व्याध मानते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: खेत पाई चुके ब्रह्म गमन
0: सुन नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रव्या रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चले बिन भजन दिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानके हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमर नाम आधार,
1: अवरो पाप स्वामी पसारो,
0: शरण कमल विद मैं और तारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: निरकर गहो नाम हर वत,
1: एहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठतावे,
0: सो तन हर से वाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस सोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटै हर अवखत लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्ताप ते आवै ठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसै हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: औ बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसै अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटै प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यो रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मर वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातु लेह एने,
0: भगत बिना बहु डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपावो,
0: संत कहत रहत गत पावो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भय नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस दाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: साध ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियानप सगली मना,
0: साध संग पावे सच तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सुख दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: ओ नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाहे,
0: एक समझ एको मन आहे,
1: एक सके गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रभ्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक आराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल स्यों लागे प्रीत,
0: भक्त करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: जय चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बट भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: किछ पुन्नी श्रद्धा सब पूरी,
0: प्रभ रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका साथिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सो क्यों बिसरे जे काल न भानै,
0: सो को बिसरे जे किया जानै,
1: सो क्यों बिसरे जे सब किछ दिया,
0: सो को बिसरे जे जीवन जिया,
1: सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लखै,
1: सो क्यों बिसरे जे बिख ते काटै,
0: जनम जनम का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरै तत एह बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन ध्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरह नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भगति तन खुशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिकसै साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: मिला को पावे संग,
1: एक बस दीजै करमया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: बार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित्त हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: संत कमाप होत उदहार
0: आप त्रैलोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजे
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनके साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जंजाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तुत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: गौर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन के मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: मोहित भगत के मन बसराम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सब ते ऊज ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुख मनी।

एक है भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने समस्ते नदाने, नमो देव देवे पेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर पाले, नमो सर गाउणे, नमो सर पौणे, नंगी अनाथे, नृसिंह परमाते, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप है परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूप है, नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे, नमो जोग जुगे स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जुगे स्वरंग परम जूते, नमो नित नारायणे कुरूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो सह सह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग सनानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्टे इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्त उल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता, अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता, परम परम परमेश्वरं परोच्छ पालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले है थले है पीत है पे है, प्रभु है जू है देश है भेस, भुजंग प्रयात छंद, अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूप, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमस्तवंग नरनाथे, नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग पंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतान, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृसंग, नमो सर्वकृसंग, नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीज अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे, कृपालंग स्वरूपे को

रूप है, अगाध है, अनूप है, अवंग आध रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाध्य अगंज अगाध्य सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग है, त्रिभुत स्वरूप है, अछेज है, अछूत है, नरकं प्रणास है, प्रथिल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभूत

है, अटह है, अगह है, असंभ है, गंभ है, नील है, अनाद है, नित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चार प्रशांत है, प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग तराणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग जोगता, सर्वंग मुक्ता, रसावल शांत है प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जा

है हमें सुल सलाम है समस्त कलाम है के साहेब दिमाग है कु सनल चराग है के कामल करी मैं के राज करी मैं के रोजी देहांदे के राज कर हिंदे करी मुल्क माल है के सनल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीब बोल नवाज है हरी फुल सिकान है रासल फिकान है कलंक प्रणास है समस्त नवास है अगंजुल गनी मै रजाय करी मैं समस्तल जुबा है के साहेब किरा है के नरकं प्रणास है बिहस्तल नवास है के सर्ब लगवान है हमेशल रवान है तमामुल तमीज है समस्तल अजीज है परं परम ईसा समस्तल अदीस है आदेशल अलेख है हमेशल अपेख है जिमिनुल जमा मिकुल इमा करिमुल कमाल है के ज्वरत अजमाल है के चलंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष है के अजब स्वरूप है क्या मित्तो बेपूत है क्या मित्तो पसा क्या आत्मंग प्रभा है क्या चलंग अन्नांग है क्या मित्तो अपांग है मद पार संत है प्रसाद मोन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर भंज अनगन प्रणाम मोल मन सलाम हर नर खंड भर नर अमंड अनपवनाश अनपवनाश मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थर मुदाम अनछिज अंग आसन भंग उपमा पार गात्म तोदार जल थल मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपवनाश त्रित धर तुरास आ जान बाहो कै सदा हो ओंकार आदि कथनिया नाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात अजे जनम बात अन झंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आ डीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन

अमृत अमृत अमृत करुणा करत करत करत तरण तरत अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृत अकृत अमृत अमृत अजबाकृत अमृत अमृत नर नायक है खल कायक है विश्वम्भर है करुणालय है नृपर नायक है सर्पायक है पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जाप जापन है अकलंकृत है।

नमः सूर्य सूर्य नमः चंद्र चंद्र नमः राज राज नमः इंद्र इंद्र नमः अंधकारे नमः तेज तेज नमः बृंद बृंदे नमः बीज बीजे नमः राज संगताम संसात रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद्ध जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलह अपह अभय अपू अजू नास कास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख नाम काम गा हटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामं बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सोतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमुल को निंदा समस्तल निवासी अजाय बेपूते गजाय भगनी में हरियं करियं करिमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं बिपूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं बिपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं तवै प्रसाद सवैये सरावग सोध समूह सिधानक सिधानक देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन सोध सुधाधक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपाहुते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बिचारे एते भय तो का भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दसान को बाज द ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गाना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दार सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पावन आहार जति जत तार सब सब चार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सोध सुपाह दुरंत दुबाह सो साज सुनाह दुर्जान दलैंगे पारी गुमान परे मन मै कर पर्वत पंख हले न हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चल लैंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार हिसार की धार पछैया तोर तदेश मलेंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाच करे उसो एक दवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भवेख भवान जपैंगे जीव जिते जल मैं दल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कह बहु पुंज खपैंगे साध समूह परसान फिर जग सत्र सब अवलोक चपैंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातव जोन त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान गजातक दान अनेक सुवंबर साज भरेंगे ब्रह्म हेसर बिशन सची पत अंत फसे जम पास भरेंगे जे नर श्री पत के प्रास है पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे भगतान लगायो बैठ रहे भगतान लगायो नात फिर सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लियो सब जन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग कर लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछाह को शीस नवायो कुबतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तहायो
कूर करया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो। कुबतान को पूजत है पास कुमरतान को पूजन तहायो। कूर करया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें का

अनुमानत महामूढ़ कश्यपे धन जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेवा पाप निबुद्ध है जेति वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेति तुमरा लखा न जाय पसौरा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप स्वरूपा रंक पहो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हो बैठा कहूं फूल राजा हो बैठा कहूं सिमट पहो संकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंग पवाद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जेते उठवत उत पाता सकल मलेच्छ करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे पुरुख जावन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोय कबार त्यह ताके काल निकट नह रक्षा होय ताहे सब काल दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाह निहर हो ताके ताव तन कम हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब

हो जो जाकी एक बार चापई को कह चापई। संबत 17 सहस पण जय अर्ध सहस फोन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रावारा तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गह जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कर

तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कह, नानक सचे साहिब क्या नाहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाहिया कर सांत सुख मन आय वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुर वेट हो जिस दिया है वडियाइया, कह नानक सुन हो संत हो सब धर हो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सब तित घर सपाद्या, घर सपाद्या शब्द वाजे कला जित घर धारिया, पंच दूत दवास कीते काल।

नहजा सहसा कित असंजम रह कर्म कमाए सहसा जीव मलीण कित संजम तोता जाय मन तो भवदला गह हर सं रह चित लाय कह नान गुर प्रसादि सहज उपज सहसा बजाय जिया मैल बारह निर्मल बारह निर्मल जी हो ता मैल तिन जन्म जुव तिनी जन्म जुव हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मन वसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर।

सेव सकत आप उपाय क्या करता, आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए, आप वेख्या गुरमुख सब बुझाए, तोड़े बंधन होवे शब्द मन वसाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनों आप करे सो होवे एक सस्यों लिवला।

गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले इती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

की फतेह। गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी संगत वड्डे भाग अमृत वाले गुरु के हजूर पहुँच के सच्चे पातशाह जी दियाँ बख्शिशां रहमता प्राप्त कर रहे हाँ। माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुरु डीठे। गुरु के दीदार कीतिया करोड़ों फल मिलते हैं। जपां दे तपां दे दान पुन बरतनेम संजम आदिक गुरु के दीदार कीते हैं। गुरु जी ने मेहर की अमृत वाले तो ही अपने सोहने दरबार में सोहने तख्तों ते प्रकाशमान हो के पवित्र दर्शन अलाही हुक्म फरमाया है। और अमृत वेले दे हजूरी की सेवा सतगुरां ने कृपा करके सत्कारयोग सिंह साहब भाई साहब भाई ज्ञानी मनदीप सिंह जी तिन्हां नूं बख्शिश कीती है। उपरंत सिमरन श्री आसा जी की वार दा कीर्तन गुरु चरण चरदास ते गुरु महाराज दा अलाही फरमान आपने सुनिया है। सेवा महाराज जी ने बख्शिश की है। सत्कारयोग मुख अरदासीए सचखंड श्री दरबार साहब सिंह साहब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी वाहिगुरू कृपा करन कथा सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने। अज दा अलाही फरमान 859 अंग उत्ते सच्चे पातशाह जी मेहर करते ने। सो गुरु कृपा करन ज्यों बुलाए त्यों बोली है ज्यों आप बुलाए सोए। लमेरा हुक्मनामा है गुरु मारे मेहर करन रसना करांगे पवित्र प्यार न।

गुरु रूप सत्संग जी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंदाजन 10-11 दिन तो दास एक लड़ीवार विचार आपनो सरवण करा रहे है। सो दर कहा, सो घर कहा, जितबे सर्व संभाले।